मिला, लेकिन वक्त का एक खास मिजाज है कि वो हर जख्म को भर देता है। तो आज जिसे सोचकर आपकी आंखों में आंसू हैं, कल उसी बात को याद करके आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ जो वो रास्ता बदल गया, वरना मैं यहाँ ना होता। जिंदगी कभी हमारा बुरा नहीं चाहती है, वो बस हमें थोड़ा मजबूत बनाना चाहती है। और उसी मजबूत जिंदगी के नाम फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपकी अपनी रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

अब हमारे वो फ्रेंड्स जो अपने घरों से निकल चुके हैं, अपनी गाड़ियों में ट्रैफिक में हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं या ऑफिस पहुंचकर अपने सिस्टम पर लॉगिन कर रहे हैं, आप सभी को सताक्षी की तरफ से अब वेरी हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव डे। वैसे आज जब आप अपने काम की शुरुआत करें तो किसी तनाव या प्रेशर में मत कीजिएगा, बल्कि इस एंजॉयमेंट के साथ करिएगा कि आज आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं। काम को बोझ मत बनाइए, उसे एंजॉय कीजिए और आपके इसी सफर को चलिए और भी शानदार बनाते हैं, आपके दिन को और भी पॉजिटिव वाइब्स के साथ भरते हैं सगले ट्रैक के साथ। सुनिए और सताक्षी के साथ यूं ही एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

हैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीटू ब्रिस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ, सुबह का मॉर्निंग शो इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, आपका हौसला और आपके चेहरे की स्माइल हमेशा उनसे बड़ी होनी चाहिए। कल की सुबह चाहे जैसी भी थी, आज की उससे बेहतर है ना। बस इसी तरह से जिंदगी का हर एक दिन सुधरता चला जाता है। अपने से प्यार करते रहिए, अपनी जिंदगी को जीते रहिए और अपनी खूबसूरत जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहिए और देखिएगा ऐसा करके आपको हर परेशानी छोटी नजर आने लगेगी। आइए फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ इस एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

अपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। किसी ने मुझसे पूछा कि सताक्षी ये बताओ कि दोस्त क्यों जरूरी है जिंदगी में। यार बहुत सारे जवाब हैं इस एक सवाल के, लेकिन आज के दौर में सबसे जरूरी दोस्त हैं ताकि आपको अपना दिल डॉक्टर से न खुलवाना पड़े, आपका दिल जो है वो दोस्तों के आगे ऑटोमेटिक खुल जाए। अपनी बातें शेयर करने के लिए ना इंसान को बीवी की जरूरत होती है ना बच्चों की, जरूरत होती है तो सिर्फ दोस्त की, क्योंकि वो दोस्त आपको कभी जज नहीं करते। दोस्त आपसे कभी ये नहीं कहते कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। वो आपके साथ बैठकर आपको सुनते हैं, कभी कभी आप पर हंसते भी हैं, लेकिन आपके दिल का वो सारा गुबार निकाल देते हैं। इसलिए दोस्त बहुत खास होते हैं, और उन्हीं खासम खास दोस्तों के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए अभी, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का एक और सताक्षी के साथ आपका साथ। आई रियली होप कि आपने जरूर एंजॉय किया होगा और आपको जरूर मजा भी आया होगा। बस कुछ और जज्बात कल बिखेरेंगे, कुछ और बातें कल होंगी, हम और आप कल की मॉर्निंग को फिर से साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज अब इस सफर से, इस हमारे शो से इजाजत लेने का, विदा लेने का वक्त है। सो कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कल होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो बॉलीवुड दे विच ना एक अदाकारा अजिही है कि है जिसनू कदे कोई भुल ही नहीं सकदा। बेशक वो अज साडे विचकार नहीं है पर हमेशा जदों भी स्क्रीन ते आउंदी है ना तो पुरानियां यादां ताजियां कर दिंदी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर दे दौरान श्रीदेवी ने सदमा, नगीना, चांदनी, इंग्लिश इंग्लिश मिस्टर इंडिया जा जुदाई चालबाज वर्गियां कई यादगार फिल्मां कीतियां जिन्हां तों उन्हां नूं वक्खरी पहचान मिली। तां मैं सोचिया कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मां बारे गल करिए, पर उन्हां फिल्मां बारे नहीं जिन्हां दे करके ओह फेमस होई, क्योंकि ओह फिल्मां तां सब नूं पता ही है कि ने जुबान ते रहिंदियां ने ना, जिवें मिस्टर इंडिया हो गई, चालबाज हो गई, इन्हां नूं किवें भुल सकदा है कोई। हां, उन्हां फिल्मां बारे गल करदे हां जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दिता सीगा। दस दो, तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मां बारे जाणोगे तां। करदी हां तुहानूं हैरान, पर पहलां सुणो एक गीत।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: Y'all really got it f***ed up right now.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश और दिनाल से बने हुए। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सी के ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी उस विच शिल्पा शेट्टी भी सी। आ गई ना यार, बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बाजीगर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती सी कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर एक चीज तुसी समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस सी ना कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी। बाजीगर दे विचों मुहब्बते दे विचों अगे वी मैं दसदी आं इस बारे, सबर रखो।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हां जी रैग बफर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 ते चार छे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिस नूं रिजेक्ट कीता सी श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं है अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए मेकर्स की। यह रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजैक्ट कर दिता। रिजैक्ट होया तो फिर ये हेमा मालिनी कोल गया, नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल के बिल्कुल परफेक्ट लगी।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, तो उस फिल्म का नाम हैगा जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहले सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी। ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हां, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 एफ ते जी आर चे संदेश अलग दिना से बने हुए। एक और शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी को ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसे मना कर दिया सी, तो फिर रोल गया जूही चावला के हिस्से। नो डाउट जूही चावला ने इसे बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया है, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी थी। हुण इमेजिन करते हैं जो श्रीदेवी होंगी तो किस तरह की लगनी सी फिल्म।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

हाँ जी, वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहने का। पर देखो हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी। तो उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना, तो बाद दे विच इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट किया गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चले गई। तो उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई, क्योंकि इस तो पहला तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। ते देखो ये सारिया फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजेक्ट करतीआं। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि कहड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो, या ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਿਸੋਨੀ ਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਤ ਬ੍ਰਿਸੋਨੀ ਐਟ ਬ੍ਰਿਸੋਨੀ ਡੋਟ ਕਾਮ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और कैसे हो आप, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, थर्सडे का दिन और मजेदार दिन। और आपको अच्छा लग रहा है कि हम सब अच्छा लग रहा है? चलिए, जैसा भी लग रहा है हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि हम आपको एंटरटेन करने, आपको एकदम मजेदार और अच्छा फील कराने, आपको पॉजिटिव फील करवाने और दुनिया में क्या चल रहा है ये सब बताने फिर से आ गए हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ हम आपको सुनाएंगे जबरदस्त से खूबसूरत से गाने भी। सो सारी चीजों का मेल जोल होगा, यहाँ पे बातें होंगी, गपशप होगी, इन्फॉर्मेशन होगी और बहुत सारे जबरदस्त वाइब भी होगी। और यहाँ पर एकदम जबरदस्त तरीके से हम एक माहौल क्रिएट करने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आपको पता है हमेशा किससे होती है? वेल ऑफ कोर्स एक हेल्दी रिचुअल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। और ये है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। मतलब जब भी हम कुछ शुरू करते हैं हम ये करते हैं, क्योंकि ये हमें उसे अच्छे से, प्रोडक्टिव तरीके से और एकदम शांत मन से करने में हेल्प करता है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से आइए। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत जबरदस्त से गाने के साथ। एक ऐसा गाना जो आपको अच्छा फील करवाएगा, आपको शादी वाला फील करवाएगा और आपको बहुत सारे और इमोशंस, रोमांस से रिलेटेड भी फील करवाएगा। वाय? क्योंकि सबसे पहला गाना जो है वो है मधानिया, और ये गाना जो है वो गाया है राहुल वैद्य ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये उन्होंने अपनी ही शादी के उपलक्ष्य पे गाया था, तो यू कैन इमेजिन कि इमोशंस जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट है और एकदम सही वक्त के हैं। सो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की जबरदस्त से गाने के साथ, और फिर करते हैं और बहुत सारी गपशप।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। और अब जरा आपको लेकर चलते हैं, मौसम क्या अंगड़ाई ले रहा है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मौसम के बारे में जानना जरूरी है भाई। हमेशा कहती हूँ, मौसम हमारे प्लान्स को सीधा नहीं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी, आजू बाजू से भी नहीं, बल्कि सीधा अफेक्ट करता है। सो बिना देर किए सबसे पहले आपको बताते हैं टेम्परेचर। मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस, बट वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील ऑन द अदर हैंड आपको हो रहा है 23.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। चलिए ये तो हुई दिन की बात। रात की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे, और 30% चांसेस बारिश के, जो कि अगेन ना के बराबर, बट कुछ इलाकों में वो होगी, लाइक नॉर्थ ब्रिस्बेन, और वो हमेशा ही होता है, मतलब थोड़े बहुत चांसेस है ना, तो नॉर्थ ब्रिस्बेन में हमेशा बारिश होकर निकल जाती है। जी हाँ, तो ये है हाल ऑफकोर्स मौसम का। एयर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो वो है एकदम एक्सेलेंट। और इसी के साथ आज का मौसम जो है वो अच्छा था, आज टेम्परेचर भी जो है वो ज्यादा था, तो आपको ठंड जो है वो उतनी फील नहीं हो रही थी। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा था कि विंडी रहने वाला है, तो वो डेफिनेटली था। फ्राइडे यानी कि कल की बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब ये जो ठंड हुई है उसके बाद जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो आपको कल मिलने वाला है, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस के करीब। और बारिश के चांसेस जो हैं वो 20% होंगे। और सैटरडे की अगर बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, जी हाँ 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 10% चांसेस बारिश के। और मुझे पूरी तरह से सूरज जो है वो खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि मौसम है भाई, अपनी तरफ से कुछ तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर जितना देख पा रहे हैं मुझे बादल नहीं नजर आ रहे हैं, और अच्छा खासा सूरज और सूरज की रोशनी यानी कि विटामिन डी जो है आपको भर भर के मिलने वाली है। सो आनंद लीजिए इसका। और इसी के साथ अब आगे की ओर चलते हैं और एक और प्यारा सा गाना आपको सुनाते हैं।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर ली जाए आपकी फरमाइशों की। जी हाँ, आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत हो गई जबरदस्ती, गाने भी अच्छे अच्छे चल रहे हैं, मौसम के बारे में हमने आपको बता दिया है, टेम्परेचर क्या कह रहा है, आगे दो दिन के लिए क्या कह रहा है वो भी बता दिया। तो अब बारी आती है आपकी फरमाइशों की, क्योंकि इससे पहले हम अपनी गपशप में लीन हो जाए आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी फेवरेट फरमाइशें हमारे इस प्रोग्राम में ला सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो उन गानों के साथ और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। सो ऑल यू नीड टू डू इज डायल अ नंबर, अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, नंबर है +9182888-7170-1। आई रिपीट, +9182888-7170-1। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और आप जब तक भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से लव मी थोड़ा और क्या। आइए, गाना है खूबसूरत है तो सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, मैं आज सुबह उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक और जबरदस्त सा प्रपोजल जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपने और मैंने दोनों ने ही सोच लिया था, हम सब ने सोच लिया था कि हमने अभी तक के सबसे ज्यादा खतरनाक, यूनिक, वियर्ड प्रपोजल्स जो है वो देख लिए। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर दिन कोई नया इंसान कुछ नया करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए तैयार है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन समवन एल्सेस, राइट। सो यहाँ पर ये प्रपोजल हुआ है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर। मुझे लगता है कि आपने भी इसके बारे में सुन तो लिया होगा, या देख लिया होगा, तो या पढ़ लिया होगा। लेकिन इन केस अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये डेयर डेविल कपल जो कि स्टंट करते हैं मूवीज में, स्टंट करते हैं, दे आर एक्टर्स ऑल्सो। सो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा बैनर लेके ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं और पहले एक बैनर जो है दिखाते हैं, उस बैनर में कुछ लिखा होता है विच आई एम नॉट गोना से अभी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। और फिर वो बैनर वो हटाते हैं, वो एक जगह पर खड़े होते हैं, वो बंदा अपनी नीज पे जाता है और अपनी डेयर डेविल लेडी को प्रपोज करता है। या आपने सही सुना। सो अगेन, मतलब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ने की वजह से उनको जेल तो हो सकती है डेफिनेटली, बट ये प्रपोजल जो है ये ऐसा प्रपोजल है जो कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे और भी बहुत सारे लोग याद रखेंगे, क्योंकि हर कोई ऐसे प्रपोज नहीं करता। और प्रपोजल जो है वो हमेशा स्पेशल होना चाहिए। आप लोग बोलोगे नीवे शर्मा तुम क्या सलाह दे रही हो हमें कि हम भी किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाएं और फिर प्रपोज करें। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट द थिंग इज कि प्रपोजल्स जो है वो हमेशा याद रहते हैं। So, कुछ तो अच्छा कीजिए, कुछ तो यूनिक कीजिए। बट या ये डेयर डेविल कपल जो है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। एंड ऑफ कोर्स हम यही कहेंगे कि वो लेडी ने हाँ कर दिया हो, विच शी लिटरली सेड कि उन्होंने हाँ कर दिया है, और ऐसे में कपल गिरी उन्होंने कर दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे बहुत ही अच्छे से डेयर डेविल कॉस्ट्यूम में, और उनके बच्चे भी बोलेंगे वाओ आर पेरेंट्स वर रियली कूल, राइट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों आप सोचिए, आप किसी को आइडलाइज करते हैं, मतलब आप किसी एक्टर को पसंद करते हैं, किसी म्यूजिशियन को पसंद करते हैं और आप सोचते हैं कि ओके नाउ इट्स टाइम टू गेट मैरिड, आप शादी करने की लगते हैं, शादी करने की कोशिश करते हैं और जिस दिन आप शादी कर रहे होते हैं उस दिन वही आइडल, वही एक्टर या वही म्यूजिशियन आपकी शादी में एकदम से पहुंच जाता है, आप कैसा फील करोगे? आप लोग बोलोगे कि है निविया शर्मा, इससे ज्यादा अच्छा सरप्राइज तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। इट डजेंट हैव टू बी अ एक्टर और यू नो व्हाट म्यूजिशियन, इट कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी जिसको आप आइडलाइज करते हो और आपके जिंदगी के सबसे स्पेशल दिन पे वो आपके सामने आ जाए एकदम से, तो आपको तो अच्छा फील होगा ही, राइट? वेल, ऐसा ही कुछ हुआ जब मार्टिन गैरिक्स और ईडी शिरान ने एक कपल की वेडिंग को एकदम कॉन्सर्ट में बदल दिया और उनको लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, नॉट बिकॉज दे आर गेटिंग मैरिड, बिकॉज उनके आइडल्स उनकी शादी में पहुंच गए। लेकिन ये हुआ कैसे? सो वेडिंग सीजन जो है, इट गॉट एन अनफॉरगेटेबल ट्विस्ट व्हेन ईडी शिरान एंड मार्टिन गैरिक्स crashed newlyweds Tessa Kindlin and Brandon Hardy's reception in Chicago. So Chicago ka ye khoobsurat sa incident hai jahan par ye hua hai. Ji haan, aapko bata de ki ye magical surprise jo hai na wo secretly plan kiya gaya tha, arrange kiya gaya tha by the bride's brother. I know. Matlab ladkiyon ke bhai itne acche hote hain. Sab ladkiyon ke bhai itne acche hote hain ya nahi hote? I hope mera bhai ye sun raha ho. And then he'll be like, you know what, to shaadi to kar, main tere liye sab leke आऊंगा. बट देन ही विल बी लाइक कि हाँ शादी तो कर. चलिए फिर से वापस आते हैं इसमें. सो ये जो खूबसूरत सा अरेंजमेंट और प्लान किया गया, ये प्लान किया गया ब्राइड के ब्रदर के द्वारा, जिसने मार्टिन गैरिक्स और उनको, यानी कि मार्टिन गैरिक्स को उन्होंने मैसेज किया ऑन इंस्टाग्राम, ये सोचते हुए कि वो जो फेमस डीजे है वो लिटरली जो है वो जल्दी से उनकी शादी में अगर एक क्विक विजिट कर दे तो कितना अच्छा होगा. एंड उनके नियर बाय, मतलब जहाँ पे वो शादी कर रहे थे उनके पास में ही उनका कॉन्सर्ट भी चल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि मार्टिन गैरिक्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता. सो दैट्स व्हाट ही प्लान्ड. उन्होंने मैसेज किया मार्टिन को और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा. और हम लोग कितने ही लोगों को मैसेज करते हैं, अपने आइडल्स को मैसेज करते हैं, राइट? बट कितनी बार ये होता है. बट जब सबने ये सुना और जब कुछ सबको ये पता चला कि उसका रिप्लाई आया और वो चीज सच में हो गई, जब मार्टिन ने सच में कह दिया, उन्होंने हां कर दी कि वो आएंगे तो आएंगे लेकिन साथ में ईडी शिरान को भी लेकर आएंगे, एड शिरान को भी लेकर आएंगे, एंड देन पीपल वर लाइक ओ माई गॉड, ऐसे हुआ क्या? मतलब सोचो कि आप किसी को मैसेज करते हो कि यू नो व्हाट, मेरी बहन की शादी हो रही है और मजा आ जाएगा अगर आप हमारी बहन की शादी में शिरकत करने पहुंच जाओ, तो सामने से बंदा बोलेगा कि ओ वाओ, चलिए ठीक है, मैं एक और बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा अपने साथ, चलेगा ना? मतलब खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा ना? ऑफकोर्स कम नहीं पड़ेगा. ऑफकोर्स सामने वाला यही बोलेगा कि वाओ, मतलब इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है. सो अगेन, जब वो आए, उन दोनों ने जो है वो परफॉर्म किया अपना कोलैबोरेशन रिपीट इट, और एड की जो आइकॉनिक लव बैलेड है परफेक्ट, वो भी उन्होंने वहां पर परफॉर्म की. कपल जो है उन्होंने फर्स्ट डांस जो है वो शेयर किया उसी गाने पर, और उसके बाद जो है मार्टिन ने लिटरली क्लोज किया सेलिब्रेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने हिट नंबर इन द नेम ऑफ द लव से. I don't know if anything can be better than this, literally. And ऐसे ही ये 10 मिनट का सरप्राइज जो है उसने ब्राइड और ग्रूम और वहां पे जितने भी लोग थे उन सब की जिंदगी का एक खूबसूरत सा मंजर जो है वो वहां पर बना दिया. I was like, हाँ ठीक है, अगर ऐसे ऐसे करके सरप्राइजेस मिलते रहे तो शादी करने में बुराई नहीं है. मतलब हाँ, शादी के बाद वाला प्रोसेस रहने देंगे, जाने वाला और अपने पेरेंट्स को छोड़ने वाला, पर उसके अलावा बाकी सब ठीक है. मतलब ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे तो शादी करने में बुराई नहीं है, राइट? आप लोग बोलोगे नीवा शर्मा यू आर फनी, वेल आई एम फनी. तो आइए एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.

जी दोस्तों, एंड इट्स गोइंग टू बी अ अल्फा वीकेंड. आप लोग बोलोगे अल्फा वीकेंड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया? वेल वेल वेल, अल्फा द मूवी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड टुमारो, और उसके लिए जो प्रमोशंस हैं फिल्म क्रू के द्वारा, वो इतने घमासान तरीके से चल रही हैं कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ. सो हर शो में, हर रियलिटी शो में, और हर जगह वो पहुंच रहे हैं, हर स्टेट में पहुंच रहे हैं, और शर्वरी बाग और हमारी आलिया भट्ट और साथ में बॉबी देओल, ये सब आपको मिलने वाले हैं. और इसमें आलिया भट्ट इज गना बी किकिंग सम रियल एसेस. जी हाँ, आपने सही सुना. सो यहाँ पर आलिया भट्ट जो है, शर्वरी बाग जो है, नजर आने वाली है, वो भी बहुत ही खतरनाक किलर अवतार में. लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये किलर अवतार लिटरली अचीव किया है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी वेरी वेरी वेटरन, यू नो, स्टंट मैन, और यू नो वॉट, फिटनेस एक्सपर्ट के द्वारा. सो ऐसे जो है वो हॉलीवुड से स्टंट मैन और फिटनेस एक्सपर्ट्स जो है वो मंगवाए गए थे इस मूवी के लिए. और आप लोग बोलोगे, हैं रियली? फिर तो हमारी उम्मीदें जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं. लेट्स सी मूवी कैसे होने वाली है. वेल ऑफ कोर्स कल मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है, और कैसी होगी वो तो हमें कल ही पता चलेगा. लेकिन आलिया भट्ट ने इससे पहले जिगरा में भी कुछ ऐसे किया है, लेकिन यहां पर तो वो प्रॉपर तरीके से एक एथलेटिक जोन में आपको नजर आने वाली है. बट वेन आई से एथलेटिक, शी इज नॉट अ एथलीट इन दिस मूवी, शी इज अ कॉप, अ स्पाई, अ एजेंट. और फिर बाकी की चीज तो आपको तभी पता चलेगी जब आप ये मूवी देखोगे. सो आलिया भट्ट के साथ शर्वरी बाग और बॉबी देओल फिर से इसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, या पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, या कोई शेडी और ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये तो आपको तभी पता चलेगा. लेकिन यहां पर एक बात तो पक्की है कि वी आर इन फॉर अ ट्रीट. नाउ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आलिया भट्ट पे ये रोल सूट नहीं कर रहा है, विच आई डोंट अग्री विद एक्चुअली, क्योंकि आलिया भट्ट को जो है हमने बड़े प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से और बड़े, यू नो वॉट, बड़े ही अच्छे अच्छे रोल्स प्ले करते हुए देखा. लेकिन जब मार धाड़ की बात होती है ना, तो उनपे मार धाड़ सूट करती है या नहीं करती है, दैट्स अ क्वेश्चन, यू नो, ऑफ अ डिफरेंट सिचुएशन. बट द थिंग इज कि यहां पर आप लोगों को कैसा लग रहा है? जिगरा का ट्रेलर देखिए और मुझे बताइए क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि कल मूवी रिलीज होने वाली है. एंड या, हर जगह प्रमोशनल एक्टिविटी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है. यू टेल मी, किसके लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो? बॉबी देओल के लिए, आलिया भट्ट के लिए, शर्वरी बाग के लिए? जो हाँ, जरूर बताइएगा. इसी के साथ यहाँ पर एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the Great Australian Dream.

0: homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, अब जो मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ, बेसिकली उसकी लाइंस कुछ ऐसे हैं, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल. बट चिल ही है जो यूरोप के लोग नहीं कर पा रहे हैं. जी हाँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. वेल ऑफकोर्स द टेम्परेचर. मतलब यूरोप ने ऐसी समर्स देखी ही नहीं. गेस वॉट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे पंखे होते हैं, जहाँ पे एसी होते हैं. लिटरली मतलब उन्होंने जगह ही नहीं बनाई हुई अपने घरों में पंखे के लिए, एसीज के लिए, क्योंकि उनको लगता था हमेशा यहाँ ठंड रहेगी, ऐसा ही रहेगा वैसा रहेगा. पर लिटिल डिड दे नो कि वो इतना अपना जो है वो गड़बड़ कर देंगे नेचर के साथ कि नेचर कहेगा अच्छा तुमको लगता था यहाँ ठंड ही रहेगी, आओ तुमको गर्मी दिखाते हैं. अब आप लोग बोलोगे कि इतनी गर्मी अगर इंडिया में हो तो लोग एकदम मजे से जी रहे होते. मतलब जो गर्मी इस वक्त यूरोप में पड़ रही है, लोग लिटरली बेहाल हो गए. लेकिन उतनी ही गर्मी में इंडियन लोग चाय पी रहे होते हैं, दैट टू गर्मा गर्म अदरक वाली. इमेजिन कीजिए. लेकिन जो सबसे अजीबोगरीब चीज है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका गड़बड़ है ही, लेकिन गर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि वहां की ट्रैफिक लाइट्स और रोड भी पिघलने शुरू हो गए हैं. जी हाँ, आपने बहुत सारी वीडियोज में देख ही लिया होगा अभी तक कि यूरोप की गर्मी जो है वो कुछ ऐसे हाल में चली गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है. लोग एसी लेने के लिए, पंखे लेने के लिए होड़ में लग रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे से छीना छानी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है. मतलब ये तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है ही नहीं, हमने ऐसा टेम्परेचर देखा ही नहीं, ये चल क्या रहा है. खासकर जर्मनी, इटली, फ्रांस, यहां तो सबसे ज्यादा इटली और फ्रांस में सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे. अच्छा, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं जो कि इंडियन है. दे आर लाइक कि ओके, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि गर्मी इज नॉट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का गड़बड़ है. अब आप खुद ही देख लीजिए कि इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हमारे यहाँ पे ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, तो हम दोनों चीजों के लिए रेडी रहते हैं. अगर हमको ठंड लगती है तो हम हीटर चलाते हैं, अगर हमारे को ठंड लगती है तो हम हीटर चलाते हैं, और अगर हमको गर्मी लगती है तो हम एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, राइट. बट वहां के लोगों को लगता था कि हमेशा वहां ठंडी रहने वाली है, गर्मी तो कभी आएगी ही नहीं, और आएगी भी तो थोड़ा बहुत चलो यार लेक में नहा के, समुंदर में नहा के एकदम नमकीन हो के हम निकल जाएंगे और वो गर्मी हमको कभी फील ही नहीं होगी. लेकिन टर्न्स आउट कि यहाँ हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए. इमेजिन 1000 से ज्यादा लोग यूरोप में अभी तक मर चुके हैं इस गर्मी की वजह से. और बहुत सारे लोग जो इंडियन हैं, जो दूसरी जगहों से हैं, जो कि लिटरली जहां ठंड भी होती है गर्मी भी होती है, उनका कहना है कि प्रॉब्लम गर्मी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एसीज और पंखों के लिए जगह ही नहीं रखी हुई. मतलब देयर आर सम पीपल जिनका ये कहना है कि अगर हम लगाना भी चाहें तो भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि जगह ही नहीं है. मतलब कहाँ लगाएं, इस घर में कहाँ दिख रही है आपको जगह एसी की या पंखे की. सो या दैट्स अ प्रॉब्लम यूरोप. आगे से आपको रेडी होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी नहीं किया तो क्या किया. अच्छा चलिए, इनकी ट्रैफिक लाइट्स भी पिघल रही हैं, इनके रोड भी पिघल रहे हैं, वो तो मेरी समझ से ही परे है. मतलब ठीक है, इंसान पिघल रहे हैं वो एक बात है, पर रोड 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में रोड पिघलने शुरू हो गए हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि 40 डिग्री सेल्सियस की जो गर्मी है वो कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, बट द थिंग इज कि रोड पिघल रहे हैं. मतलब क्या चल रहा है ये. जी हाँ, आप मुझे बताइए, आपने भी ऐसी वीडियोस देखी या नहीं देखी. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जस्ट चिल चिल है, लेकिन चिल यूरोप के लोग तो कर नहीं पा रहे हैं.

जी दोस्तों, इसी के साथ अब चलते हैं सीधा खबरों की तरफ, रुख करते हैं। जी हाँ, वक्त हो गया है, सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हो गई, अब और भी होंगी आगे, लेकिन अब बीच में जो है वो वक्त हो गया है किस चीज का। वेल ऑफ कोर्स फरमाइशों के साथ, ऑफ कोर्स आपकी फरमाइशें तो चलती रहेंगी, वो हमेशा चलती रहेंगी, वो नहीं रुकना चाहिए। और उसी के साथ खबरों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है और पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लीडर्स क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स। आइए जरा सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं रूस यूक्रेन की तरफ। रूस का यूक्रेन पर फिर बड़ा हमला, राजधानी कीव में 10 लोगों की मौत। जी हां, रूसी सेना ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हमले के बाद शहर के कई इलाकों को खाली कराया गया, विस्फोटों से राजधानी की कई इमारतें हिल गईं। यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की उस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर तंकाचेंको ने बताया कि हताहतों की संख्या काफी अधिक है और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, दुश्मन एक बार फिर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और आम नागरिकों की हत्या कर रहा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यह हमला हाल के यूक्रेनी हमलों के जवाब में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किया गया था।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: यार, सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहां ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं ईरान की। जी हाँ, ईरान ने कहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई के खून का बदला जरूर लेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि वॉर कभी भी खत्म नहीं हो रही है? जी हाँ, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में घोषणा की है कि वह आयतुल्ला अली खामनेई के खून का बदला लेगी। बीबीसी की फारसी सेवा के मुताबिक ईरानी मीडिया ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाकर जोलकरद की सेर की ओर से दस्तखत किया हुआ एक संदेश प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि आयतुल्ला अली खामनेई के खून का बदला उनके हथियारों से निश्चित तौर पर लिया जाएगा। मोहम्मद बाकर का यह संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 को हुई थी। इसी दिन ईरान पर अमेरिकी और इजराइल ने पहला हमला किया था। इस हमले में कई अन्य अहम ईरानी अधिकारियों के साथ साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए थे। बीबीसी की फारसी के मुताबिक अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में 4 से 8 जुलाई तक तेहरान, कोम और मशहद में आयोजित किए जाएंगे, जबकि शोक सभाएं ईरान के शहरों बगदाद, काजमीन, करबला और नजफ में भी आयोजित की जाएंगी।

जी दोस्तों, वही ट्रंप ने भी कुछ कहा है, यानी कि अमेरिका ने भी कुछ कहा है। आइए जरा जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के नतीजों के बारे में अब क्या कहा है। आप लोग बोलोगे कि अब क्या कर दिया इस इंसान ने, अब क्या कह दिया। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में हुई प्रगति सकारात्मक है। ये भी दावा किया है कि कतर में हाल ही में हुई बैठकें भी अच्छी रही हैं। बुधवार को नॉर्थ डकोटा के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को घटाने की दिशा की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बहुत अच्छी बैठकें हुई हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव भी डाला है, लेकिन इसके बावजूद बातचीत की प्रक्रिया जारी है। ईरान लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान और अमेरिका के बीच कतर की राजधानी दोहा में अप्रत्यक्ष तकनीकी वार्ता चल रही है, जिसमें कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये तो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पिछले गली ईरान कह रहा था कि हम दोहा किसी और रीजन की वजह से गए हैं, हमें कोई बातचीत नहीं करनी है इस नेशन के साथ, क्योंकि ये नेशन एकदम गद्दारी करता है। मतलब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और वैसे मुझे भी इन लोगों पर, इन दोनों नेशंस पर विश्वास नहीं रहा। एक थोड़ी सी देर में लड़ पड़ते हैं, थोड़ी सी देर में कहते हैं हम एकदम शांत हो गए, हमने AMU साइन कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया, लेकिन फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यही चल रहा है यहां पर। जी हां, एग्जैक्टली क्या होगा वो तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, बट आई होप जो भी हो वो पीस से रिलेटेड हो, बिकॉज शांति की जरूरत है हमारी इस दुनिया को, इस धरती को, और कलेश की या किसी भी तरह की वॉर की नहीं। बल्कि यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक और चीज जो कि ट्रंप से रिलेटेड है। ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है, लेखिका ने मांगा हर्जाना। जी हाँ, सो माजरा क्या है? सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर किसी के ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हैं तो वो प्रेसिडेंसी के लिए रन कैसे कर सकता है। लाइक हाउ कैन समवन डू इट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदालत पहुंची लेखिका ई जेन कैरोल ने अनुरोध किया है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जूरी की ओर से तय किए गए $50 लाख के हर्जाने को भुगतान करने का आदेश दे। 3 साल पहले एक दीवानी सिविल मामले में जूरी ने ट्रंप को कैरोल का यौन उत्पीड़न करने और बाद में उनकी मानहानि करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेखिका का यह अनुरोध अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रंप की उस याचिका को खारिज किए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने मामले की दोबारा सुनवाई की मांग की थी। मई 2023 में न्यूयॉर्क की एक जूरी ने कैरोल के पक्ष में $50 लाख हर्जाना देने का फैसला सुनाया था। कैरोल का आरोप था कि ट्रंप ने 1990 के दशक में उनका यौन उत्पीड़न किया था और बाद में सोशल मीडिया पर इस घटना को झूठा और मनगढ़ंत बताया था। ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है। 82 वर्षीय कैरोल पहले एक पत्रिका में स्तंभकार रह चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1990 के दशक के मध्य में ट्रंप ने मैनहट्टन स्थित वर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर के ट्रायल रूम में उनका यौन उत्पीड़न किया। उनका यह भी आरोप है कि 2022 में ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने उनके आरोपों को झूठा बताकर उनकी मानहानि भी की थी। जी हाँ, अब ऐसे में ये व्यक्ति जिस पर इतने मतलब जघन्य आरोप लगे हुए हैं, वो लिटरली प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। जी हाँ, मतलब अभी जो 1 साल हुआ है ये मिस्टर ट्रंप की प्रेसिडेंसी की शुरुआत का, ये जो उनका सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है, उसमें उन्होंने $1 बिलियन से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में बनाया। सो बेसिकली ये इंसान कहता है कि इसका एब्सटीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो कुछ और कहती हैं। अब ऐसे में किसने इस इंसान को, इस व्यक्ति को चूज किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड उसका भुगतान पूरी दुनिया कर रही है। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्ची निविया के साथ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और फिर यूके और फिर अब यूएई बन गया है वो तीसरी कंट्री जो कि बैन कर रहा है बच्चों के सोशल मीडिया यूजेज को। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये अंडर 18, अंडर 16 नहीं बल्कि अंडर 15, मतलब 15 साल से छोटे जितने भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो यूज नहीं कर सकते सोशल मीडिया। वो कोई यू नो व्हाट, कुछ यूजर नेम नहीं बना सकते, कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, कंटेंट बना भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, सो तीसरी कंट्री जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो गई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बहुत ही ज्यादा सही है। मतलब ऑफ कोर्स हर कंट्री में बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी है। दे हैव बीन वांटिंग दिस रूल फॉर सो लॉन्ग। सो ऐसे में यूएई भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर उन्होंने कह दिया है कि 15 साल से छोटे बच्चे कॉन्टेक्ट जो है कॉन्टेंट शेयर नहीं कर सकते, ना कॉन्टेंट बना सकते हैं, ना सोशल मीडिया चला सकते हैं, ना अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। या सो दैट्स व्हाट हैपेंड एंड या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया और बहुत सारी और कंट्रीज ने माना। आई लाइक इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आई है। जी हाँ, आपको नहीं पता तो आइए आपको बता दें कि व्हाट्सएप जो है वो जल्द ही एक नया फीचर लेकर आ रही है, जिस फीचर से व्हाट्सएप में कोई भी यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम जो है वो हर एक पर्सन क्रिएट कर पाएगा, और वो यूजर नेम से कोई भी व्यक्ति आपको ढूंढ पाएगा। आपका नंबर प्राइवेट रहेगा उस यूजर नेम से, जो कि यूनिक यूजर नेम आपने क्रिएट किया होगा, उसके थ्रू वो आपको कॉल और मैसेज कर पाएंगे। और आपका नंबर जो है, जो कि आपको शेयर करना पड़ता था अभी के लिए, जब तक आप अभी तक व्हाट्सएप चलाते थे, हम सबको अगर किसी को व्हाट्सएप पे अपने साथ जो है उसे लाना होता था तो हमें अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो शेयर करनी पड़ती थी, हमें अपना नंबर जो है वो शेयर करना पड़ता था। लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना पड़ेगा, नंबर जो है वो प्राइवेट रह सकता है, और वो जो यूजर नेम है, जो कि यूनिक यूजर नेम हम क्रिएट करेंगे, उसी के थ्रू लोग हमें ढूंढ पाएंगे, हमें मैसेज कर पाएंगे, और हाँ, हमें कॉल भी कर पाएंगे। नाउ इज इट अ गुड थिंग? ऑफ कोर्स इट इज अ गुड थिंग इन अ वे, बट देन ये बाकी सोशल मीडिया की तरह ही हो गया। मतलब इंस्टाग्राम पे भी ऐसा ही होता है, राइट? इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक यूजर नेम है, उसके थ्रू हमें कॉल कर सकता है कोई, उसके थ्रू हमसे कोई मैसेजेस पे बात कर सकता है। बट अगेन, जो प्राइवेसी पॉलिसीज होंगी वो वैसी ही रहेंगी। मतलब अगर आप चाहो तो आपको सब ढूंढ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर आप ना चाहो तो वही लोग जिनको आप चाहते हो वही आपको ढूंढ सकते हैं, वही आपको मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर जो आपके साथ आपका यूजर नेम जो है वो ऑलरेडी जानते हैं और जो आपके साथ हैं। जी हाँ, सो ये वाली सिचुएशन जो है वो है। लेकिन यहां पर व्हाट्सएप आपको एक और चीज करने के लिए बोलेगा जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए, और वो क्या है? वेल ऑफ कोर्स, जब आप अपना यूजर नेम बनाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपको आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ सिंक करने के लिए कह सकता है, ताकि अगर आपको अपना यूजर नेम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो कहेगा, वो सजेस्ट करेगा कि आप अपना इंस्टाग्राम वाला यूजर नेम जो है वो कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हो अपने व्हाट्सएप की यूजर नेम से, और वैसा कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। बट द थिंग इज कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा कैच है, और वो ये है कि इंस्टाग्राम वाला यूजर नेम अगर आप लिंक करते हो अपने व्हाट्सएप के यूजर नेम के साथ,

वो लोग जो कि आपके साथ इंस्टाग्राम पर है, वो सभी के सभी लोग आपको व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, विच यू डोंट वॉन्ट, क्योंकि व्हाट्सएप है ही इसलिए कि आपको सब कॉन्टेक्ट ना कर पाए, आपके सिर्फ जो जिन लोगों को आप चाहते हो वही कॉन्टेक्ट कर पाए. इट्स नॉट लाइक एनी अदर सोशल मीडिया. सो या ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं. आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं, और क्या आप इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसे ही ठीक था कि नंबर आप देते थे तो कोई आपको कांटेक्ट कर पाता था, अगर किसी के पास आपका नंबर नहीं होता था तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाता था और वो ऐसे ही अच्छा था. मतलब इंस्टाग्राम जैसा क्यों बनाया जा रहा है व्हाट्सएप को भी. वेल, ये सोच पर है, किसी को अच्छा लग सकता है किसी को नहीं. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा, और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे लिसनर्स यानी कि आप भी एक्साइटेड रहते हो। तो वही सेगमेंट, वही बहुत खूबसूरत सा समा जो है वो आ गया है। शुरुआत हो रही है इस सेगमेंट की बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, और उसका नाम है अपलम चपलम। I don't know, but ये गाना ना अपने आप में एक वाइब है। अगर आपने इसे एक बार सुना है तो आप इसे बार बार सुनना पसंद करोगे। जी हाँ, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स इन डिफरेंट एंड यूनिक वे। सो या, इसी के साथ शुरुआत करेंगे, सुनाएंगे आपको पुराने किस्से। और अगर आपकी फरमाइशें हों जो कि हो पुरानी, तो मतलब पुराने गानों से रिलेटेड, तो मजा आ जाएगा। सुनते हैं गाना और फिर करते हैं बातें।

जी हाँ दोस्तों, जब टैलेंट की बात होगी ना तो किशोर दास से टैलेंटेड इंसान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आर्टिस्ट इस कैलिबर के कि एक्टिंग हो तो क्या बात, गायकी हो तो क्या बात, कॉमेडी हो तो क्या बात, और म्यूजिक और लिरिक्स हो तो भी क्या बात। आप लोग बोलोगे कि ठीक है, हमने किशोर दा के गाने सुने हैं क्योंकि उन्होंने गाए हैं, हमने उनकी एक्टिंग देखी है क्योंकि उन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन गाना गाया और गाना बनाया वो दो अलग अलग चीजें। मतलब तुमने कहा नीवे शर्मा कि गाना लिखा और गाना कंपोज किया। वेल, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सुनाया था कि कैसे आडी बर्मन एक जगह बहुत ज्यादा सैड थे एक वक्त, और एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और उसके गाने भी बन रहे थे। आडी बर्मन को म्यूजिक बनाना था किसी गाने के लिए और वो बना नहीं पा रहे थे, तो वहां पर किशोर दा सामने आकर उसका म्यूजिक बना कर दिए। उन्होंने कभी उसका क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वो म्यूजिक जो है वो बना दिया। हमेशा उस क्रेडिट में नाम आडी बर्मन यानी कि पंचम दा का ही रहा, लेकिन गाने का म्यूजिक जो है वो रियल में किसने बनाया था? किशोर दा ने। जी हाँ, अब ऐसे ही कुछ मैं आपको बताती हूँ, और शायद आपने सुना भी होगा कि किशोर दा जो है वो पहले रैपर रहे हैं। ऑल्दो रैपर नाम उन्होंने यूज नहीं किया, जो उपाधि है उन्होंने यूज नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी पिक्चर्स में रैप किया है। जी हाँ, ही वॉज द फर्स्ट रैपर ऑफ इंडियन फिल्म सिनेमा। जी हाँ, यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि सिचुएशन क्या थी। जी हाँ, एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और एक गाने की रिकॉर्डिंग उसी पिक्चर के लिए होनी थी। उसमें माहौल ऐसा था कि मजरू सुल्तानपुरी जी ने गाना जो है वो लिख दिया, और साथ में किशोर दा को जो है वो गाने के लिए बुलाया गया। अब मजरू सुल्तानपुरी जी ने गाना बनाया था, मतलब उन्होंने गाना लिखा था, बोल लिखे थे, तो किशोर दा आते हैं और वो कहते हैं मजरू सुल्तानपुरी जी से कि अच्छा दो बोल दो, मैं गाता हूँ। तो मजरू सुल्तानपुरी जी कहते हैं किशोर दा मैंने आपको कल ही दे दिए थे बोल, मैंने आपको कल ही एक पेपर पकड़ाया था जिसपे लिखा हुआ था। तो बस फिर वो क्या था, सामने से किशोर दा कहते हैं कि अब्दुल, जो कि उनके सेक्रेटरी कम ड्राइवर थे, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल अरे वो गाड़ी से कागज तो निकाल के लाओ जिसपे मजरू जी ने कल मुझे लिख के दिए थे बोल गाने के। अब्दुल वहां पर घबरा जाते हैं और फटाफट किशोर दा के कान में आकर बोलते हैं कि किशोर दा गड़बड़ हो गई है, मुझे लगता है कल जो आप पाव भाजी खा रहे थे और पाव भाजी खाने के बाद जो आपने हाथ पहुंचे थे जिस कागज से, वो वही कागज था जिसमें मजरू जी ने आपको बोल लिख के दे दिए थे। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ, वेल आई एम गोना टेल यू दैट, पर पहले हम आपको एक और गाना सुनाएंगे जो कि जबरदस्त होने वाला है। और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो किसने गाया कि आप गेस कर सकते हैं? सोचिए, उस गाने का नाम है एक परदेसी मेरा दिल ले गया।

0: मेरा दिल।
1: जी हाँ दोस्तों, तो बता रहे हैं हम आपको किस्सा इंटेलिजेंस और टैलेंट का, जो कि किशोर दा ने सर्व की है ओवर द इयर्स। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है, ये एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं ही और रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त वो म्यूजिशियन भी थे। आई मीन व्हेन आई से म्यूजिशियन, मतलब वो गायक बहुत अच्छे थे। जी हाँ, मतलब वो कॉमेडी कर सकते थे, वो सीरियस रोल प्ले कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उन्होंने बोल लिख दिए एक फिल्म में एक गाने के, और वो क्यों हुआ, और उसी का किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ। सो जैसे मैंने कहा कि विश्वजीत चटर्जी जो है इस मूवी को बना रहे थे, और इस मूवी के गाना था एक, और जिसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा था। अब रिकॉर्डिंग के लिए किशोरदा आते हैं, वो कहते हैं मजरू जी को कि ओके जरा कागज दो मुझे जिस पे लिखा हुआ है गाना, मैं गाता हूँ। वहां पर मजरू जी सामने से कहते हैं कि पर किशोरदा, मैंने तो आपको कल ही दे दिया था ना, वो जो बोल थे जिस कागज में लिखे हुए थे वो मैंने कल ही दे दिया था। वहां पर वो कहते हैं अपने सेक्रेटरी कम ड्राइवर अब्दुल जी को कि अब्दुल ऐसा करो गाड़ी से जरा निकाल कर लाना। तो अब्दुल जी घबरा कर कहते हैं कि गाड़ी में तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कल पाव भाजी खाते खाते आपके हाथ गंदे हो गए थे, उसके बाद जिस कागज से आपने अपने हाथ पहुंचे थे वो वही कागज था। बस क्या था, वहां पे हक्के बक्के रह गए सब लोग की रिकॉर्डिंग होने वाली है, सब कुछ हो गया है, और यहाँ पर बोल ही नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली किशोरदा ने पाव भाजी खाते खाते बोल वाले कागज से ही वहां पर अपने हाथ पहुंच लिए। फिर क्या था, अब यहाँ पर किशोरदा जो है वो कभी भी सीरियस तो रह नहीं सकते थे। जी हाँ, मतलब कभी भी आप किशोरदा को सीरियस देख ही नहीं सकते। ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी वेरी यू नो, मतलब आप एक ऐसी एनर्जी कैरी करके रखते थे वो, कि सामने वाला सिर्फ हंस सकता है, घबरा नहीं सकता, नाराज नहीं हो सकता। वहां पर उन्होंने थोड़ा लाइट हार्टेड किया सबको, और उन्होंने विश्वजीत जी से पूछा कि ओके सिचुएशन क्या है मूवी में, जरा मुझे समझाओ और फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। विश्वजीत जी उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक मैजिशियन है जो कि ट्रिक्स दिखा रहा है, और वहां पर वो कुछ गाता है, और वो क्वकी से लिरिक्स होने चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। मजरू सुल्तानपुरी जी तो पहले ही ऐसा लग रहा था कि कोमा में चले जाएंगे, उनको लिटरली वो खड़े हैं वहां पर, बैठे हुए हैं वहां पर, किस लिए, क्योंकि वो अपना गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं लेकिन गाना ही गायब हो गया है। सो ऐसे में किशोरदा ने सिचुएशन सुन ली, फटाफट उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर एक गाना जो कि रैप जैसा साउंड करता है, जी हाँ, और उस वक्त के लिए ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वो लेकर आए और एक ही टेक में उसे गा के डन भी करवा दिया। जी हाँ, सो बेसिकली किशोरदा ने एक्टिंग जबरदस्त की, गायक वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थे, उन्होंने गाने का म्यूजिक भी बना दिया आरडी बर्मन के लिए, और यहाँ पर उन्होंने गाने के लिरिक्स भी लिख दिए। सो बेसिकली ऐसा कुछ था ही नहीं जो वो कर नहीं सकते थे। वाज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक सिंगर, और जो भी था, मतलब ही वॉज ऑलवेज द बेस्ट, या दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब बंदे ने सोचा कि अब पाव भाजी खाने के चक्कर में गड़बड़ तो कर दी है, अब यहाँ पर भरपाई तो करनी पड़ेगी, रायता फैल चुका है, समेटने का वक्त आ गया, जल्दी जल्दी कुछ तो लिखना पड़ेगा। बंदे ने गाना ही लिख दिया। आप लोग बोलोगे कि बंदे कैसे बोल रहे हो, आई मीन प्यार से हम उनको बोल रहे हैं, बट ऑफकोर्स किशोरदा इज किशोरदा एंड लेजेंडरी है वो हर मायने में। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। कल है फ्राइडे, मतलब मस्ती और माहौल। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, फ्राइडे का तुम इतना जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट करती हो कि जल्दी ही आ जाता है। जी हाँ, ये कहना है मेरे लिसनर्स का कि जल्दी से ही आ जाता है फ्राइडे। आई वाज लाइक बात तो सही है, आई लाइक इट कि फ्राइडे जल्दी से आ रहा है, बिकॉज फ्राइडे इज लव। दैट्स इट, इससे ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और इसी के साथ ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि थोड़ा हैप्पी हैप्पी गाना है, क्योंकि इसका नाम है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। वेल, बात तो सही है, ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल इधर भी आ जाता है, उधर भी आ जाता है, उस पे आ जाता है, उस पे आ जाता है, हर किसी पे आ जाता है। सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, बाकी सब बढ़िया है। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: सारे जवान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। अमेरिका के सम्मान में रंगेगी ब्रिस्बेन सिटी। जी हाँ, सबसे पहले ब्रिस्बेन का सिटी हॉल पूरी तरह से रेड, व्हाइट और ब्लू यानी अमेरिकी झंडे के रंगों की रोशनी से जगमगाएगा। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर दुनिया भर की आइकॉनिक इमारतों को लाइट अप किया जा रहा है और ब्रिस्बेन भी इसी जश्न का हिस्सा बन रहा है। इसी के साथ, क्यों नीली और सुनहरी होती है स्टोरी ब्रिज की लाइट, क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ, सिटी काउंसिल ने आज अपनी एक दिलचस्प रिपोर्ट में बताया कि जब भी स्टोरी ब्रिज पर किसी इवेंट की बुकिंग नहीं होती तो उसे हमेशा नीले और सुनहरे रंगों से चमकाया जाता है, क्योंकि यही दोनों रंग ब्रिस्बेन शहर के ऑफिशियल कलर्स हैं। इसके साथ, ब्रिस्बेन में मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन में ठंडी हवाओं के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। हालांकि गंभीर मौसम की कोई चेतावनी नहीं है। वहीं मेडिकल एड्स वेयरहाउस फिर से खुला। जी हां, क्वींसलैंड हेल्थ की तरफ से एक जरूरी लोकल अपडेट है। ब्रिस्बेन स्थित मेडिकल एड्स सब्सिडी स्कीम, जो कि MASS है, का मुख्य वेयरहाउस आज यानी 2 जुलाई से पब्लिक के लिए फिर से अपने नियमित समय पर खुल रहा है। इसी के साथ, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स की तैयारियां तेज। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स को लेकर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग अब अगले चरण में पहुंच गई है। काउंसिल ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ जो हमारे कूटनीतिक संबंध है, वे लॉस एंजलिस 2028 और ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक के आयोजन को और भी शानदार बनाने में मदद करेंगे। वहीं लोकल कम्युनिटी इवेंट्स की शुरुआत। जी हां, जुलाई का महीना शुरू होते ही ब्रिस्बेन के अलग अलग सबर्ब्स में विंटर कम्युनिटी फेस्टिवल्स और फूड मार्केट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। काउंसिल ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे वीकेंड पर इन मार्केट्स में आएं और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट भी करें। इसी के साथ, अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख। जी हाँ, सबसे पहली खबर यूएन से है, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हरीश पर्वत नेनी ने साफ लफ्जों में कहा है कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं पेट्रोल डीजल की डिमांड में भारी उछाल। जी हां, कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में ईंधन की खपत तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नए डाटा के मुताबिक जून के महीने में देश में पेट्रोल की डिमांड में 7% और डीजल की डिमांड में करीब 5.5% की बढ़त दर्ज की है। इसी के साथ, केजरीवाल का सनातनी दाव। जी हां, राजनीति के गलियारे से खबर है कि भारत की आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करती है। इसी के साथ, पार्टी की लड़ाई पहुंची चुनाव आयोग तक। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के बागी विधायक, जिनका नेतृत्व ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं, आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिले। इसी के साथ, जेलों में दिव्यांग कैदियों के अधिकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में केरल के एक एक्टिविस्ट ने याचिका दायर कर मांग की है कि भारतीय जेलों में बंद दिव्यांग कैदियों को खुद अपनी डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता की पहचान और डिक्लेरेशन करने की परमिशन मिलनी चाहिए। इसी के साथ, अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले नाटो चीफ की रूस को चेतावनी। जी हां, नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने रूस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यूक्रेन का युद्ध खत्म होने के बाद भी रूस लंबे समय तक यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा। वहीं कीव पर बड़ा मिसाइल हमला। जी हाँ, यूक्रेन की राजधानी कीव आज सुबह दहल उठी। रूस ने भारी मात्रा में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की जान चली गई। वहीं भारत पाकिस्तान ने सौंपी कैदियों की लिस्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की एक नई शुरुआत हुई है। दोनों देशों ने आज अपने अपने कब्जे में मौजूद एक दूसरे के कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत। कतर की राजधानी दोहा से एक बड़ी और राहत देने वाली खबर है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत में पॉजिटिव प्रोग्रेस यानी सकारात्मक सुधार देखा गया है। वहीं जापान में भूकंप के झटके। जापान के मुख्य द्वीप होंशु के पूर्वी तट, खासकर इवाते प्रांत के पास आज रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या सुनामी का अलर्ट नहीं है। वहीं व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी फीचर। टेक वर्ल्ड से बड़ी खबर। व्हाट्सएप दुनिया भर के अपने 3 अरब से ज्यादा यूजर्स के लिए एक नया यूजर नेम फीचर ला रहा है। अब लोग अपना फोन नंबर शेयर किए बिना भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे बड़ी और पहली खबर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से अमेरिका राउंड ऑफ 16 में। जी हां, खेलों की बात करें तो इस समय पूरी दुनिया पर फीफा वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं बालोगुन के सेलिब्रेशन पर लेब्रॉन जेम्स का ट्वीट। जी हाँ, इसी मैच में जुड़ी एक दिलचस्प खबर यह है कि जब अमेरिकी फुटबॉलर फोलारिन बालोगुन ने गोल करने के बाद बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स के आइकॉनिक द साइलेंसर स्टाइल में सेलिब्रेट किया, तो खुद किंग जेम्स ने सोशल मीडिया पर इस पल की तारीफ करते हुए ट्वीट कर दिया। वहीं हैरी केन का जलवा इंग्लैंड अगले दौर में। इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने एक नया इतिहास रचा है। कप्तान हैरी केन के 2 शानदार गोल्स की बदौलत इंग्लैंड ने कोंगो को 2-0 से हरा दिया। साल 1966 के बाद ये पहली बार है जब इंग्लैंड हाफ टाइम तक पिछड़ने के बाद कोई वर्ल्ड कप मैच जीतने में कामयाब रहा हो। वहीं अभिषेक शर्मा का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां, क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए बहुत बड़ी और गर्व की खबर है। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही T20 मैच में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो सबसे कम गेंदे खेलकर T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आज दूसरा सेमीफाइनल लंदन में चल रहे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में आज रात एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने जा रहा है। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर

0: फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: दोस्त की खुशी।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसी बने होए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडी ब्रसोनी 101.1 FM ते जी आप चे संदेश शलक दनाल से बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा सर बहुत सोणा जवड़ा शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नु असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रसोनी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते brasoni@brasoni.com साडी ईमेल आईडी है। सरिया जिहड़ा तुहानू चंगा लगदा तुसी अपना पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर जरूर करते रहा करो, है ना। तां फटाफट जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल। ते मैं बस सुने वापिस आनी हाँ, थोड़ा कला किते छड़ के जाना, एक गीत थोड़ा सुना नहीं हैगी। मैं तुसी ना गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापिस आई।
1: कैनेडा हो गए नहीं?
2: एक्सक्यूज मी सर, हां सर एक प्रॉब्लम हो गई।
3: क्या?
2: की मॉडल नहीं आ रही।
3: क्यों
2: सर? आपकी मोबाइल पे तो फोन आ रहा है कि वो नहीं आएगी।
3: ला फोन दे।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660
1: Samsung ki mala pe simroom hai.
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 ते चार छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिसनू रिजेक्ट कीता सी श्रीदेवी ने, ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया हैगा। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं हैगी अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए मेकर्स की। यह रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजैक्ट कर दिता। रिजैक्ट होया तो फिर ये हेमा मालिनी कोल गया, नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल बिल्कुल परफेक्ट लगी।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित ते शाहरुख खान दी एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, ते उस फिल्म दा नाम हैगा है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस दे विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहला सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी, ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हां, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुणिया गया सी श्रीदेवी नूं।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। एक होर शाहरुख खान की मूवी हैगी है जी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो मूवी सी जी डर। डर के पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी को ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसनों मना करता सी, तां फिर रोल गया जूही चावला दे हिस्से। तां नो डाउट जूही चावला ने इसनों बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया है, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी। तो हुण इमेजिन करते हैं जो श्रीदेवी होंगी तो किस तरह की लगनी सी ये फिल्म।

हाँ जी, वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहण का। पर देखो हुण लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजैक्ट की थी। तो उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जो मना करता सी ना, तो बाद दे विच इसनू इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट किया गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चले गए। तो उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई, क्योंकि इस तो पहला तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। ते देखो यह सारिया फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजैक्ट करदियां। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि कहड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो, या थोड़ा लगता है कि काश फिल्म दे विच श्रीदेवी नू कास्ट किया जाता तो यह फिल्म बहुत ज्यादा सोहनी होनी सी, है ना। दसो दसो फटाफट दे ना। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जिथे ब्रिसोनी @ब्रिसोनी.com साडी ईमेल आई डी जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा होए अपनाओ, साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तो यही कहने जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल मिलते हैं, करते मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: आया क्या?
3: आएगा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफ़र जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

एचिप्रस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो अपन अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं।

ये सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में, आगे जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े। वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन। उम्मीद करती हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने दिन की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जरूर कर रहे होंगे। आज है फ्राइडे यानी कि 3rd of July है। अगले एक घंटे तक दोस्तों हम रहेंगे आपके साथ, लेकर लेटेस्ट न्यूज, वेदर अपडेट, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड की बातें, बहुत सारी बातें और जी मोटिवेशनल थॉट तो बनता ही है, और बीच बीच में आपके साथ हम सवाल जवाब सब कुछ करेंगे। तो बिना किसी देर से शुरू करते हैं आज का ये मॉर्निंग शो यानी कि जाने का सफर। हंसते हंसते सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मवाणी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस गीत के बाद आइए कुछ न्यूज अपडेट्स यानी हेडलाइंस जान लेते हैं। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है और कई जगहों पर जो है बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं पर भारत टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो नए माइलस्टोन्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में आज भी कई रोमांचक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम वेदर अपडेट की बात करें तो आज कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता यानी कि अम्ब्रेला या फिर रेनकोट साथ रखना ना भूलें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिसवानी।

हाँ जी, हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है दोस्तों। कल की चिंता छोड़िए ना, और आज के दिन को हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है एक प्यारा संगीत सुनने का, और उसके बाद हम एंजॉय करेंगे बहुत सारी बातें, और फिर हम थोड़ी देर में फिर से लौटेंगे रेडियो ब्रिजवाणी पर और लेकर आएंगे बहुत सारी दिलचस्प बातें। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए ओनली ऑन रेडियो ब्रिजवाणी।

हाँ जी, तो दोस्तों अगर हम बॉलीवुड अपडेट की बात करें तो बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स और सॉन्ग्स जो है वो लगातार रिलीज हो रहे हैं। इस वीकेंड आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी सी मूवी या फिर म्यूजिक का मजा जरूर ले सकते हैं। वहीं अगर स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो क्रिकेट और अन्य जो स्पोर्ट्स है उसमें जो प्लेयर्स हैं वो अपनी आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट की तैयारी में काफी बिजी दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स हमें जो है टीम वर्क और डिसिप्लिन की सीख भी देता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे ही कुछ और आप सभी के बीच खबरें जो है वो मैं जरूर लेकर आऊंगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो प्रसवानी में। तो आइए एंजॉय करते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक।

वहीं पर अगली खबर की ओर बढ़े तो दोस्तों, ब्रिस्बेन की प्रॉपर्टी मार्केट में लगभग 3.5 इयर्स बाद जो है पहली बार मीडियन होम प्राइस में हल्का सा गिरावट जो है वो देखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे होम बायर्स को बेहतर मौके मिल सकते हैं। वहीं पर ब्रिस्बेन को ऑस्ट्रेलिया की तेजी से यानी कि बिजनेस हब जो है वो माना जा रहा है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नए इन्वेस्टमेंट्स की वजह से सिटी में जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दोनों बढ़ रहे हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो पिसवानी। जाइएगा कहीं भी मत, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी है।

इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 का जो प्रोग्राम है वो अनाउंस हो चुका है। फेस्टिवल में आपको म्यूजिक, डांस, थिएटर और कल्चरल प्रोग्राम्स जो परफॉर्मेंस है उनका शानदार कॉम्बिनेशन जो है वो भी देखने को जरूर मिलेगा। वहीं पर दोस्तों क्वींसलैंड में रेल सर्विस पर इंडस्ट्रियल एक्शन के चलते कुछ रूट्स जो है उस पर रिड्यूस्ड टाइम टेबल्स चल रहे हैं। पैसेंजर्स को ट्रेवल से पहले लेटेस्ट अपडेट्स चेक करने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों ये जानी हमने बहुत सारी खबरें आज, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन के साथ। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बहुत से लोग ना हम सबको कहते हैं कि हमेशा हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराहट जो है अपने होंठों पर रखी रहनी चाहिए। हमेशा स्माइल करने से हमारे स्ट्रेस को, कहते हैं ना कि दूर करने का जो राज है वो मुस्कुराहट है। जी हाँ, हर डॉक्टर भी कहता है कि मुस्कुराना चाहिए। योगा जब हम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि हंसना जो है हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक फैक्ट है दोस्तों। दोस्तों मुस्कुराने से ना स्ट्रेस कम होता है और जो हमारा मूड है वो भी बेहतर होता है। जो हमारे अंदर एक कहते हैं ना इमोशनल जो चीज अंदर हमारे होती है, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं वो इमोशनल चीज जो है बाहर निकल कर आती है, उससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। या हम लोग वॉक करते हैं ताकि हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी मेडिसिन जो स्ट्रेस दूर करने का वो है स्माइल। अगर हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो हमारे मूड जो है वो बेहतर हो जाता है और रोज जो है हमेशा दिल खोलकर हमेशा हमें मुस्कुराना चाहिए। तो यही सलाह दी जाती है, हमेशा स्माइल करें और अपने स्ट्रेस को जरूर दूर करें। ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, मुस्कुराकर सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो मॉर्निंग शो यानी कि जाने का सफर है यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। कल फिर इसी वक्त हम रेडियो ब्रिस्वानी पर एक नए दिन और नए जज्बे के साथ जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

नमस्कार, मैं साक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तक्षशिला की ऐतिहासिक जगहों से छेड़छाड़ करने पर यूएन ने पाक को चेताया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। यूएन ने पाक से कहा कि वो तक्षशिला की दो ऐतिहासिक जगहों पर किए गए उन रिकंस्ट्रक्शन को वापस ले जिनसे उनकी असलियत और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। साथ ही ये चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन जगहों को यूनेस्को की डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। थाईलैंड में 11 साल के बच्चे ने तीर्थयात्रियों पर चढ़ाया पिकअप ट्रक, 8 बौद्ध भिक्षुओं की दर्दनाक मौत। पूर्वोत्तर थाईलैंड में एक 11 वर्षीय लड़के ने तीर्थयात्रा पर निकले भिक्षुओं के एक समूह पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 8 भिक्षुओं की मौत हुई बताई जा रही है। 5 भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा 14 अन्य घायल भिक्षुओं को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। कानून सम्मत हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत जापान की प्राथमिकता, भारत जापान शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी विस्तार से बात हुई। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और कानून आधारित बनाने की साझा प्रतिबद्धता जताई, जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा और ऊर्जा, भारत जापान के बीच हुए बड़े समझौते। भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, धातुओं, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। यह ऐतिहासिक समझौता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर आई उनकी जापानी समकक्ष सानी ताकाइची के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद हस्ताक्षरित हुआ। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में और अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये साथ है। दोस्तों आज फ्राइडे है 3rd of July और कहना चाहेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी फ्राइडे। तो बताइए दोस्तों क्या हाल है। सप्ताह का अंत है, कुछ लोगों के लिए ये सप्ताह जो है वो शुरू हो रहा है, शिफ्ट वर्क करते हैं जब, तो छुट्टियां वीकडेज में होती है। जो भी आज प्लान्स बनाए हैं, आशा है कि आप उन्हें पूरा कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुबह का आगाज करते हैं, कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, सुबह का सफर में शामिल है आप।

को बहुत ही खूबसूरत संगीत सुबह सुबह आपके लिए पेश कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोकस्ट में क्या बताया गया है ब्रिस्बेन के लिए। 15 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 26 और विंड गस्ट आज के लिए बताया गया है 7 किलोमीटर एन आवर। सैटरडे को सनी डे रहेगा, संडे को 55% चांस ऑफ रेन बताया गया है मेलबर्न के लिए। 9 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 14 और कैनबरा 7 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 10, बारिश की संभावना है टुडे। और सिडनी के लिए 13 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 18, गोल्ड कोस्ट के लिए 17 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे बताया गया है आज कल सनी डे, संडे को 65% चांस रेन बताया गया है। और सनशाइन कोस्ट के लिए 18 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 23, विंड गस्ट बताया गया है सनशाइन कोस्ट के लिए 17 किलोमीटर एन आवर, आज 40% चांस ऑफ रेन बताया गया है, सैटरडे को सनी डे रहेगा, संडे को 65% रेन रहेगा। और दोस्तों हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका, और मैं हूं आपके साथ ही नीलम, आप सुन रहे हैं रेडियो रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, सुबह का सफर में शामिल है, हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। 9 बजे तक ये साथ है हमारा।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे। फिल्म सीता और गीता से हमने इस गीत को लिया, और जो कि आज फ्राइडे है तो सभी ने अपने लिए आज डे प्लान आउट किया होगा, शायद क्या करना है आज। घर पर रहने वाले हैं या बाहर जाने वाले हैं, शायद शॉपिंग है, ग्रॉसरी शॉपिंग है, या फिर फ्लाई आउट कर रहे हैं कहीं घूमने के लिए। बच्चे भी घर पर हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, और शायद उनके साथ कोई प्लान्स बनाए हैं आपने। तो दोस्तों, जो भी कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड कीपिंग योरसेल्फ सेफ। और शायद थीम पार्क्स जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो हैंड वॉशेज एंड एवरीथिंग वहाँ पर है। आप कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चे पानी में वहाँ पर थीम पार्क्स में, यू नो, जब शेलो पूल्स में जाते हैं तो बच्चे पानी में हाथ डाल देते हैं, देन अगर वॉश नहीं करते हैं तो और मुंह में हाथ, स्पेशली छोटे बच्चे अपने मुंह में हाथ डाल देते हैं तो वो जो बग्स होते हैं वहाँ से मुंह में आ जाते हैं, एंड देन दे हैव टमी अपसेट्स। तो ये ख्याल रखें कि पानी में, अगर शेलो पूल्स में जहाँ पर स्टारफिश होते हैं, अगर दैट वॉज लॉन्ग टाइम बैक जहाँ हम अपने छोटे बच्चों को ले जा रहे थे एंड दिस हैज हैपन टू मी, तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है। तो यू कैन हैव किड्स जो सिक हो सकते हैं, टमी अपसेट हो सकता है, तो ध्यान रखें अगर बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं। मेक श्योर यू क्विकली गिविंग देम दैट अल्कोहल हैंड वॉश, ताकि यू नो द बग्स आर नॉट देयर। उसके बाद फिर कुछ कहाँ लेते हैं, तो ऐसे कुछ अगर जू विजिट कर रहे हैं तो एनिमल्स को आप अगर टच करते हैं, कैंगरू वाले जगह पर जाते हैं वहाँ पर भी, तो बहुत सावधान रहे, यू नो, एंड स्पेशली यू डोंट वॉन्ट द किड्स गेटिंग सिक इन द स्कूल हॉलीडेज, बिकॉज इट्स टाइम फॉर देम टू हैव फन एंड दिस इज द टाइम दे एन्जॉइंग देमसेल्व्स। एंड ये भी ध्यान रखें कि दे डूइंग देयर रीडिंग एज वेल, दिस इज द टाइम जब वो सोचते हैं कि ना अभी तो छुट्टी चल रही है, अभी टी वी के आगे गेम खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम जहाँ पर आप रीड कर रहे हैं एंड यू लर्निंग समथिंग डिफरेंट एवरी डे। तो चलिए दोस्तों, जो भी कर रहे हैं, मेक श्योर यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम एंड कीपिंग योरसेल्फ सेफ। आगे बढ़ते हैं

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों, और सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। और कहीं मैंने पढ़ा है कि कहते हैं कि मौन जो होता है, बीइंग क्वाइट एंड साइलेंस, मौन जो होता है वो खाली नहीं होता, जवाबों से भरा होता है। तो कभी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप जब मेडिटेशन करते हैं, एंड जरूरी नहीं है कि आप कोई एक वर्ड का मेडिटेट करें, आप केवल साइलेंटली बैठकर किसी चीज पर फोकस कर सकते हैं, मे बी अ वाइट लाइट इन योर माइंड। तो समटाइम्स कीपिंग दैट साइलेंस फॉर अ लिटिल बिट इवन, ये आपको क्लैरिटी देता है आपके माइंड में, एंड देन इट गिव्स यू आंसर्स जो शायद जीवन के कायोस में आपको मिलता नहीं है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आई नो इट्स हार्ड, लेकिन शुरू तो कभी भी हम कर सकते हैं, राइट? एंड कहते हैं कि इफ यू आर ट्राइंग टू मेडिटेट एंड एवरीथिंग, तो ये आसानी से नहीं आता है। दे आर टाइम्स, अगर आप बहुत अच्छे आप प्रैक्टिस करते करते एकदम अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं तो, लेकिन दे आर सम डेज जहां पर आपको भी दिक्कत होता होगा, जब आपका जो माइंड है इट्स एल्सवेयर ऑन स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज पर आपका माइंड वहां है तो आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो उसके लिए तो और कठिन होगा, लेकिन छोटे छोटे टाइम्स में जब हम लेते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं, देन दैट्स हाउ यू गो। एंड जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेट करते हैं तो ही मौन रखें। दे आर टाइम्स जब आप क्वाइट रहते हैं एंड सिटिंग इन अ पार्क मे बी, एंड जस्ट लुकिंग अराउंड, एंड दैट्स बीइंग क्वाइट, एंड अपने आपको जब आप बाहर देखते हो, एंड देन यू फाइंड आंसर्स जो शायद ऐसे में नहीं मिलता है सभी के साथ में, बात करने से भी नहीं, क्वाइटनेस में मिल जाता है। तो कुछ लोग दूर जाते हैं सभी से टू फाइंड आंसर्स, टू फाइंड आंसर्स मिलेंगे तो ही पीस मिलेगा। सो दैट्स देयर वे ऑफ अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। सो दिस इज हाउ पीपल डू एंड हील देमसेल्व्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में. और कहते हैं कि जो दिखता है वो सीमित है, जो महसूस होता है वही विस्तार है. सो दिस इज सो ट्रू. जब हम कुछ देखते हैं बस उतनी तक देखते हैं जहां तक हम देख सकते हैं, राइट? लेकिन जो महसूस करते हैं वो विस्तार है. इट्स डिटेल्ड, इट्स एलेबरेट, इट्स एक्सपेंडेड, इट्स बिग, जो महसूस करते हैं. तो कभी कभी जो हम जब देखते हैं कोई चीज़ तो बस उसे ही नहीं लेते हैं. महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभी जब हम कहीं जाते हैं बस जल्दी जल्दी क्लिक करने लगते हैं पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. समटाइम्स इट्स बेटर जस्ट टू बी इन दैट मोमेंट एंड जस्ट फील, क्योंकि वो एहसास कभी जो एहसास होता है इट नेवर गोज अवे. इट्स ऑलवेज देयर. यू ऑलवेज बी एबल टू ब्रिंग दैट एहसास एंड यू नो दैट फीलिंग जो आपने उस टाइम पर वहाँ पर फील किया था. तो कभी कोई भी चीज़ देखते हैं जब दोस्तों, या कुछ नई जगह पर जाते हैं, बस उतना ही ना देखे जितना आंखों के सामने होता है, उसे महसूस भी करे. और बिकॉज दैट स्टेज विद यू. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका सुबह का सफर में.

0: दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में और कहते हैं हमेशा हम ये सुनते रहते हैं कि यू हैव टू बी थैंकफुल, यू हैव टू बी हम्बल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग अराउंड यू. तो ये थैंकफुलनेस क्या करता है? जब हम सुबह जागते हैं, बी थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, बी थैंकफुल फॉर दिस डे एंड बींग विद आवर फैमिलीज, वी ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दैट. एंड ये थैंकफुलनेस क्या करता है आपके लिए? सो ये जिस वर्ड्स नहीं हैं जो आप अटक कर देते हैं, बोल देते हैं, यू नो, ऐसे ही. एंड लेकिन अगर जो विद रियली आप थैंकफुल, जब थैंकफुलनेस जब बोलते हैं या फिर जताते हैं या कहते हैं और एंड रियली यू मीन इट, तो ये क्या कहता है कि ये आपके मन को प्योर करता है एंड फ्री करता है. फ्री कैसे प्योर करता है? क्योंकि आप क्यों थैंकफुल है? थैंकफुल है क्योंकि आपको ढेर चीजें मिली है, या थैंकफुल है फॉर द थिंग्स दैट यू हैव इवन दो वो कम हो. तो एक इंसान जरूरी नहीं है कि आपको ढेर चीजें मिली है तो लाइफ में तो ही आप थैंकफुल हो. कहते हैं यू बी थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट यू हैव एंड maybe it's for being happy today, for having a smile on your face, for having your best friend beside you, being thankful for that, for having the sun shining upon you, the warmth that you feel. So jo choti choti cheeze hain, agar man se aap thankful hai uske liye, to ye aapko free karta hai. And agar material cheezon ko lekar aap dekhe, तो आपको अब रियली में जितने आपके पास है उसको लेकर आप थैंकफुल है गॉड से एंड फ्रॉम द यूनिवर्स इन द होल. तो ये बताया गया है, ये कहते हैं कि ये ईर्ष्या से आपको मुक्त करता है, जेलसी से. एंड कोई डर ना हो किसी से, या फिर आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से. एंड ये संतोष रखता है, जो आपके पास है उसी में आप खुश है, थैंकफुल फॉर दैट. सो बहुत बड़ा काम करता है एक्चुअली ये. एंड ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये ईर्ष्या है, ये डर है, असंतोषी है, किसी से आप हैप्पी ना हो, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो प्रैक्टिस कीजिएगा. आई एम ऑल्सो गोना स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, बट नाउ वेन आई एम डूइंग इट, आई एम गोना बी डूइंग इट माइंडफुली. सो आप भी करें, यू नेवर नो, यू बी फ्री. आपका जो मन है वो प्योर हो जाएगा. एंड yeah, इट्स अमेजिंग, लाइफ इज अमेजिंग, लिटिल वर्ड्स मेक बिग डिफरेंसेस. एंड बस इसी में खुश रहना है. चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं.
1: मक्खन, एक गल दी गठरी बना ली, प्यार करना जताना दोनों जरूरी है.

0: पीछे वाले मिश्रा जी आए थे।
1: उससे?
0: हाँ, साथ में वो गधा सुनील भी आया था।
1: वैसे?
0: उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है।
1: अरे वो तो तुम बहुत बढ़िया बना लेती हो।
0: सुनील से ब्याह हो सकता है मेरा माखन?
1: तू करेगी ब्याह सुनील से?
0: कोई रोकेगा तो नहीं करूंगी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 3 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। और चलिए ट्रैफिक इंसिडेंट देख लेते हैं। गेटवे मोटरवे रॉशडेल, यहां पर मल्टी व्हीकल क्रश हुआ है साउथ बाउंड टूवर्ड्स पैसिफिक मोटरवे। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं आप, स्वागत करते हैं। 1 घंटे का सफर बाकी है और याद दिला दें आपको कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है।

0: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family. Live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: वेलकम बैक दोस्तों, और सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और फिल्मों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जो थ्री इडियट्स बन रहे थे, आपने देखा होगा। थ्री इडियट्स में जब द फेमस सीन होता है जहां पर रेंचो, फरहान और राजू आर ड्रंक ऑन द वाटर टैंक, तो आमिर खान हैड एक्चुअली सजेस्टेड कि दे एक्चुअली ड्रिंक अल्कोहल टू मेक द सीन लुक रियलिस्टिक, एंड द एक्टर्स गॉट सो ड्रंक दैट दे रन आउट ऑफ फिल्म स्टॉक एंड द क्रू हैड टू वेट फॉर आवर्स टू गेट मोर व्हाइल द ट्रियो स्टेड इन कैरेक्टर। सो अमेजिंग, राइट? देखो, कभी कभी ऐसा होता है। अभी थ्री इडियट्स में एक और एक सीन है जहां पर आमिर का जो रूल है, आमिर का जो पार्ट है, ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड एट द एज ऑफ 44 व्हेन ही द मूवी वाज मेड, तो ही सेड दैट ही ऑब्जर्व्ड हिज नेफ्यू कि वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका जो यूथ है, एंड फुल ऑफ ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। तो एज अ रिजल्ट आमिर एंश्योर्ड दैट ही वॉज नेवर परफेक्टली स्टिल, ही वॉज नेवर स्टैंडिंग परफेक्टली स्टिल एंड इन एनी शॉट, ही वॉज ऑलवेज स्वेइंग और मूविंग स्लाइटली, सो जस्ट टू ब्रिंग आउट दैट यूथफुलनेस एंड दैट एनर्जी दैट अ यंग पर्सन वुड हैव। सो जब मूवी, कोई भी मूवी बनता है, जस्ट इमेजिन उसमें कितना मेहनत लगता है, कितने सारे आइडियाज लगते हैं, तो ही एक ब्यूटिफुल पिक्चर बनकर आता है एंड हम उसे एंजॉय करते हैं। एंड आई एम श्योर एवरीवन इज आउट देयर जिसने थ्री इडियट्स देखा है, दे हैव लव्ड इट। एंड या, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट इन व्हाट हैपन एंड हाउ द रोल्स प्लेड आउट, यू नो, और किस तरह से उन्हें बनाया गया। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।

0: Some numbers carry weight beyond what you think. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में. वैसे ब्रेकफास्ट टाइम है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो क्या खाने का प्लान किया है आपने? शायद हर रोज की तरह ब्रेड खा रहे हैं, या फिर सीरियल खा रहे हैं, या कुछ भी नहीं खा रहे हैं, केवल कॉफी पी रहे हैं. तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुबह सुबह जब उठते हैं आप, तो खाली पेट में चाय या कॉफी पहले पहले नहीं पीना चाहिए. और गिव योर सेल्फ, अगर जोड़ों में दर्द है, आपके बोन्स जॉइंट्स जो है वो एक करते हैं, और तो शायद आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया है शायद आपने, या फिर तो सुबह क्या कर सकते हैं आप, रात में जो मेथी है, मेथी सीड्स को आप पानी में भिगो कर धर दे रात भर, तो वो इन्फ्यूज हो जाएगा. और देन सुबह जब उठते हैं आप, तो उसको थोड़ा हीट कर लें, एंड देन आप स्ट्रेन करके वो मेथी वाला जो पानी है वो पिए. वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है. एंड ऑल इन ऑल यू कैन हैव दैट ड्रिंक, देन यू कैन हैव योर नॉर्मल नींबू पानी जो आप लेते हैं. कुछ लोग नींबू पानी नहीं लेते जैसे कि मैं, एंड आई जस्ट टेक नॉर्मल वॉर्म वाटर. एंड स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है आपके. और हाइड्रेट, रात भर आप पानी नहीं पीते हैं, एंड यू आर बेसिकली फास्टिंग फॉर द सो मेनी आवर्स, 6-8 आवर्स जब सो रहे हैं, 7 आवर्स. तो सुबह सुबह अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, ये आपको और डिहाइड्रेट करता है और आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, एंड स्पेशली फर्स्ट थिंग. देन यू जस्ट हैव ऑल दीज ड्रिंक्स, 500 ml तो वैसे ही हो गया, 2 कप अगर आप पीते हैं, अबाउट 250 एक कप में होता है. सो बेसिकली यू वेल एंड अच्छी तरह से अवॉइड हो गया है अभी तो. एंड देन कुछ खाएं, एंड देन यू हैव योर कॉफ़ी. हाँ, खाने की बात होती है अगर, तो ब्रेड खाते हैं आप सुबह, या रोटियां खाते हैं, रोटी बनाते हैं, या फिर यू नो दैट तावे पर क्या कहते हैं, चिला वट एवर, डोसा वो बनाते हैं. लेकिन ये हमारे द अदर डे रेसिपी चेक कर रही थी मैं, तो जो बेसन है, बहुत ढेर प्रोटीन है इसमें, बेसन में, चने का बेसन में. एंड देन उसको आप अच्छी तरह से चालना है, चाल ले वट एवर, एंड देन उसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर डाल ले, एंड देन अगर आपको अगर कुछ अनियंस डालने हैं, या चिली डालना है, या धनिया डालना है, छोटी छोटी पीसेस काट ले, नमक थोड़ा डाल ले, एंड देन उसको अच्छा तरह से गोल बना ले उसका, एंड रनी होना चाहिए. एंड देन गरम तवे पर आप पतली सी धार से छोड़े, एंड देन स्प्रेड इट आउट, एंड देन अगर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्पिल कर ले साइड में, एंड देन यू टर्न इट, एंड देन देयर यू गो योर हाई प्रोटीन चिल्ला, बेसन चिल्ला उसको कह सकते हैं आप, चिलर मे बी. एंड देन एन्जॉय इट विद योर टी योर कॉफ़ी. बहुत अच्छा है, हेल्थी भी है, एंड आपको प्रोटीन मिलता है. और अगर आप छोटी छोटी थोड़े वेजिटेबल्स डाले हैं ऊपर, वैसे इसको आप आलू के सब्जी से खा सकते हैं. बेचारा आलू जिधर डालना है उसको उधर फिट हो जाता है. एंड सभी को पसंद है. और आई हैवन कम अक्रॉस अ पर्सन हु डजंट लाइक आलू एज येट इन माई लाइफ. लेकिन चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. छोटी सी रेसिपी थी, एंड टच एंड गो देयर. बनाना चाहे तो बना सकते हैं. कोई टिप इसमें ज्यादा ऐड करना चाहते हैं तो जरूर हमें बताइएगा. एंजॉय करते हैं ये गीत, सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान. नीलम का साथ है, थोड़ी देर का साथ है, और

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
5: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: वेलकम बैक दोस्तों, इट्स 8:32 और आधे घंटे का सफर बाकी है हमारा और आपका। याद दिला दें नौ पर जुम्मा प्रोग्राम है और

0: चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अभी आई वॉज गोइंग इंस्टाग्राम पर थी मैं, तो वहां पर मैंने एक इंसिडेंट देखा जहां पर सो इट वॉज अबाउट ये वुमन, शी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, तो वहां पर जो खाना ऑर्डर किया, आई थिंक जो सूप सॉर्ट ऑफ था उसमें उसने देखा एक ग्रीन लीफ एंड शी वॉज हॉरिफाइड एंड देन एवरीथिंग एल्स शी एन्जॉयड एंड देन घर वापस जाकर उसने रिव्यू लिखा रेस्टोरेंट के बारे में कि पूरा हरा भरा पत्ता मेरे सूप में आ गया, मे बी दे डिडंट सी दैट एंड सो द रेस्टोरेंट पर्सन जो डील करता है ये सब यू नो फीडबैक्स एंड ऑल, तो उसने लिखा कि दैट ग्रीन लीफ वॉज एक्चुअली अ करी लीफ एंड वैसे एंड जो भी हर्ब्स एंड एवरीथिंग दैट वी पुट इन आवर डिशेज नॉट देयर बाय एक्सीडेंट, we actually intentionally put them and we grow it in our garden. Jo restaurants ke jo garden hote hai wahan par, wahan se hum laate hai and we put it in our dishes. Lekin agar aap jo you know SBS food dekhte ho and stuff, jahan par aise curry leaf ya bay leaf ye use karte hain dishes mein, baad mein wo jo patta hota hai wo nikal lete hain, you know. So maybe that was the confusion of lady ko, and she appreciated every other dish that was there, but then she went off and said ki maybe they didn't see and they put a leaf bag se urta urta aa gaya ya patta mere khane mein to yeah, so agar aap sometimes ignore karte hai, ignorance hota hai, you know, and about stuff, aisa nahi hai. Lekin I haven't seen ki jab hamare Indian dishes bante hain, we never take out the kari patta anyway. So aisa incident hua and aise reviews hua, to this is so funny nowadays ki ab hum koi shop visit karte hain, koi restaurant jana chahte hain, pehle reviews padhte hain ki iska reviews kaise hai. You know, अभी वहां पर शॉपिंग करना है, इस साइट से शॉपिंग करना है आपको, देखते पहले रिव्यूज पढ़ ले चलो, यू नो. सो एक McIntyre सरनेम से एंड होता है, आई कांट रिमेम्बर द फर्स्ट वन, फर्स्ट नेम ऑफ दिस पर्सन, बट ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड ही इज वेरी फेमस, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड अगर आप उसके शोज YouTube पे ढेर सारे वीडियोस है उसके, तो आप देखोगे एंड देन इज सच अ फनी, ऑब्वियसली कॉमेडियन है. सो रिव्यूज के बारे में उसने एक शो किया था, कॉमेडियन एपिसोड किया था एंड इट वॉज रियली रियली हिलेरियस कि हाउ वी पीपल एक्चुअली इन द रियल वर्ल्ड दैट्स वट वी डू एंड इट वॉज जस्ट प्लेड आउट सो वंडरफुली एंड हम ऐसे ही करते हैं, वैसे यहाँ पर जाना चाहते हैं रिव्यूज पढ़ लो, वहाँ जाना है रिव्यूज पढ़ लो, कभी कभी मे बी अपने एक्सपीरियंस आई डोंट नो, कभी आजकल ऐसा हो गया है, ऐसा कल्चर हो गया है कि पहले हम कैसे जाते थे, वहां से शॉपिंग करना है बस शॉपिंग कर लेते हैं, रिव्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं, ये रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं पहले, कितनी कुछ अच्छे रिव्यूज आते हैं कुछ खराब, लेकिन खराब वाले ज्यादा स्टैंड आउट होते हैं, यू नो, एंड आई गेस दैट्स ह्यूमन नेचर. इट्स वेरी सैड दो, बट एनी वे एक जो खराब रिव्यू रहता है वो पूरे अच्छे वाले रिव्यूज को आउटशाइन कर देता है एंड वो स्टैंड आउट होता है एंड हम उसी पर फॉल होते हैं. Yeah, that's human. चलिए दोस्तों, चलिए एंजॉय करते हैं।
2: चलाओ ना नैनों से बाण रे,
1: काफी दिनों बाद ये गीत बजाया है तो लेट्स एंजॉय।

0: दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। यू हैव अ लवली डे, ब्यूटिफुल वीकेंड,
1: शादी कर सकते हैं
0: और मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन नमस्कार।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिल फरेब।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79.1 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

किसी को दौलत दुनिया वो दी अदा कर दी, मरीज के लिए अल्लाह से दुआ कर दी, माफ़ अहले खता की कभी खता कर दी।

یہ روایت رسول کی ہے بے قصوں کے واسطے رہے.

0: टीवी सुनते हैं मुस्तफा।
1: म्यूजिक ट्रैक की फकरिया पेशकश।
0: किसी भी गरीब से पाते हैं सब

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन।